वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिप इन टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784 94 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

पहाड़ आई थे के पन थलल थलल नदी जयो मलल थलल पहाड़ आई थे के पन थलल थलल किसो

पानी घे चंदन माटी निहराओ, तू बोझे धरती माटी में समाओ। पानी घे चंदन माटी निहराओ, तू बोझे धरती माटी में समाओ। मत था तो मात्र ही इन मोती हो, मत फूल पूजा को

चिंद्र माया ले उड़ायो मेरो मन चिंद्र माया ले हिम्मती थेलो माय थलाला थलाला पहाड़ आई छे के पनी थलाला थलाला हिम्मती थेलो माय थलाला थलाला पहाड़ आई छे के पनी थलाला थलाला।

तिमला के भाग मै मात्र था जवानी को रातले होला रात परी छो तुम्हारा डोला डोला हाथ में

0: बजाज एक्सचेंज मेलामा जाम मई दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जाम मई लिएर जानुहोस्। जाम मई वैल्युएशन, जाम मई कैश डिस्काउंट
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 10 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम, शहीद गेट गुराही दाम।
3: संपर्क फोन 082-562-4223। संपर्क मोबाइल नंबर 98-578-30-151, 98-478-33-133 र 98-686-37-214।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सब कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सुनसना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन बीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: समस्या
3: पाठे घर में समस्या पाठे घर खस्ने को समस्या
1: पाठे घर में मासु पलाउने
3: निसंतान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठे घर में कैंसर भय नभए को चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग को आधुनिक मेसिन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि संपर्क गर्नुहोला
4: बिरामी जांच निमित्त यही असार 26 गते शुक्रवार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नम्बर 082-595-410 मोबाइल नम्बर 98-478-28913 र 98-095-12-871
3: हुनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ
1: नेपाली जुत्ता घर
4: राप्ती अञ्चलकै सबैभन्दा ठूलो जुत्ता चप्पलको शानदार घर
1: नेपाली जुत्ता घर हामी कहाँ नेपालका 10-15 बढी ब्रान्डका आकर्षक जुत्ता चप्पलहरू सीमित अवधिका लागि 10% देखि 50% सम्म बम्पर छुट
4: अब ढिला नगर्नुहोस् आफूलाई मन पर्ने जुत्ता आफै छान्नुहोस्
1: स्वदेशी उत्पादन को प्रवर्धन गरौ स्थान सिटी प्लाजा होटल को उत्तर पट्टी थारू गल्ली हुराही दाल
4: संपर्क मोबाइल नंबर 98577175646

0: बाद एक्सचेंज मेला में जम्मै दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जम्मै लिएर जानुहोस्। जम्मै वैल्युएशन, जम्मै क्याश डिस्काउंट।
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 10 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम शहीद गेट गुराही दाम।
3: संपर्क फोन 082-562-423। संपर्क मोबाइल नंबर 98578-30151, 98478-33133 र 98686-37244।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज ही को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोही कसैलाई रोग लागे पोखरा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिसियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुटु, नाक, कान, घाटी, टाउको, गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन, लिवर ऑपरेशन लगायत स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण काम हुन्छ।

1 get 1 free offer ma. 3 महीना को 125 Mbps internet. तो 2700 में खरीद कर दा. Free internet package. नया चरण को लागी gift करने मौका. सफल referral ma. आपने लागी 1 महीना free internet. Vianet. अब सब connected.